अड़या लोक मारी देता ने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडियां खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे भी इश्क कमाया पले पई जुदाई, अपने आप दी होश रहे ना दुश्मन बने लकाई। जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिन

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरा च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

0: जा सारे कर दिए ले जा लड्डा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लड्डा परी विदाई। धन्यवाद जी।
1: हरजीत रूपी तो बाद हुण मैं जिला जलंधर दी तहसील फलौर दे इतिहासिक पिंड दसांझ कलां दे शायर राम प्रकाश टोनी जी नूं सदा देण जा रहा हां कि आन से अपनी रचना जिहड़ी आ साडे स्रोतियां दे नाल सांझी करन। ते ओह लिखदे ने जिंदा जिस दी जमीर है। राम प्रकाश टोनी जी तुहाडा स्वागत है।
2: सत्कारयोग साथियो, मेरी रचना है जी जिंदा जिस दी जमीर है। जिंदा जिस दी जमीर है आदमी ओ अमीर है, कीते जिसने बड़े कपड़े, कीते जिसने बड़े कपड़े, बनिया ओ कल वजीर है, बनिया ओ कल वजीर है। अमीर सी सभ्याचार साडा, अमीर सी सभ्याचार साडा, गायका कीता लीरो लीर है, गायका कीता लीरो लीर है। पहला पाले घोगड़ बिले, पहला पाले घोगड़ बिले, हुण सीने मारदा तीर है, हुण सीने मारदा तीर है। दुध त सारा डेरी जावे, दुध त सारा डेरी जावे, ताइयों काना शरीर है, ताइयों काना शरीर है। सुधर जांदे बड़े बड़े, सुधर जांदे बड़े बड़े, डंडा लुच्चियां दा पीर है, डंडा लुच्चियां दा पीर है। घर घर रांझे जमदे ने, घर घर रांझे जमदे ने, पिटदी फिरदी हीर है, पिटदी फिरदी हीर है। कातल दे गल फुल पैंदे, कातल दे गल फुल पैंदे, सच दे अखी नीर है, सच दे अखी नीर है। असी इको मां दे जाए हाँ, असी इको मां दे जाए हाँ, बिच मजमा पाई लकीर है, बिच मजमा पाई लकीर है। टोनी जो हक्कां ले लड़दा है, टोनी जो हक्कां ले लड़दा है, दसांझ ओ बहादुर वीर है, दसांझ ओ बहादुर वीर है। धन्यवाद जी।
1: राम प्रकाश टोनी तो बाद हुण मैं कपूरथला बसदी साडी शायरा रजनी वालिया नूं कामे फल दे विच सदा देण जा रहे हां। रजनी वालिया जी अपनी कविता विच लिखदे ने मिट्टी नाल मुहब्बत हो गई। आओ प्यारे श्रोते देखिए ओ किवें मिट्टी नाल मुहब्बत करदे ने। रजनी वालिया जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है।
3: नमस्कार जी, मैं रजनी वालिया कपूरथला तो अपनी रचना लैके हाजिर हाँ मिट्टी।

हो गई मिट्टी मेरी माँ। जो मिट्टी नाल पांडा बनदा तू मिट्टी दा पूरा कदे मान।

के अड़या लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे

जो दुनिया पत्थर मारे, असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना, असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

ताई पहनने आनी बकरी पारोवे, पहनने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई, सौरे घर जाती है कर ली फर्जां दी कमाई। जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई, जा सौरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नी चलिया कोई। पटोलिया दी खेड मुक्की, पटोलिया दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी

रात तक करना आंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मारदा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लिआउणा पैना, इनकलाब दा पुत्तर लिआउणा पैना। सच कहिंदे ने सियाणे झट आई उत्ते आया, सच कहिंदे ने सियाणे जे झट आई उत्ते आया, सच कहिंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे, सच कहिंदे ने सियाणे भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तेरे केड़ा छत तो आने तेरे।

अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहिंदी सी, तेरे घर बैठी माए दस तेनू की कहिंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए,

जिंदवादियां चे डुब गई जे संतरी जांदे ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई जे संतरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास